धन पायो, चित्तौड़ रतन धन पायो ऐसा नहीं बोलिया, राम रतन धन पायो। एम भगवान स्वामीनारायण वक्त में 500 परमहंसो होता है। त्रण संस्था ये आप लोग खूब विरोध करती हती, बी क्यूब बाबाओ मग्निराम जेवा, लोलंगर बाबा जेवा बाबाओ, कारण के बाबाओ बड़ी राम की राखे, अरे मारा बेटा गाजो शंको भंग पीता है, अने सूरत थी किलो किलो नी सिलती घार बोले एवा बाबू, એટલે બાવાઓનો બહુ ત્રાસ હોય, લો લંગર બાવો હોય, મગનીરામ બાવા જેવા બાવાઓ ત્રાસ, બીજું બ્રાહ્મણો, કારણ કે બ્રાહ્મણો છે ને

कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद गुण तुम्हारा गाववा बुद्धि आप जो सुख कंद।